0: जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, अस्सलाम भाई, क्या हाल है?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत है? आप सुनाए, आप कैसे हो?
1: अल्लाह शुक्र है, सब आता हुआ है।
0: उर्दू शुरू टूल सिस्टम दिल तक कन्वर्ट को इशू कर दे तब आता हुआ
1: शुक्रा
0: सर दाखा खबर है चरता ना मोहम्मद खान फ्रामवाना जिता सुलह शामदीद हर कली द इजना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम लवाई मा और बस अगर गुलून आगा वाला खार रहना पाती शुगी आगा में दर्द दरा छो नूर मोहम्मद खान जून खरवान दे
1: अल्लाह
0: से महसूसी की मोहम्मद खान मुंग तो फर्स्ट टाइम कॉल करे का
1: ना सेकंड टाइम दा।
0: अच्छा सेकंड टाइम दे बस फर्स्ट टाइम वाले जमा नहीं रही नन जोड़े जमा दिमाग से ही कार न कही दामा बेगा अल्त अलमन हियर ऑयल नहीं दी लगे उली का नवे तो बांधे दबा दाम वाले न दे बस आखा जमाने ये शुरू दा चीजा कलू लगो ब्या बस जमा बिल्कुल दासी मा घना तबे का ताजा ताजा विंडो में कड़े था
1: बिल्कुल दारा कोना और दिन को लगा इसी पर बस फिर आचार कही
0: मोहम्मद खान दारा तू है चे पवाना के दकम जी सर तारुक साथ आई कहा सुवानी ने खबर एक हुई मोहम्मद खान जमन प्रोडक्ट मरौड़ी दी दारा चरता कने दी
1: इस्तेमाल
0: माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मोहम्मद खान सुमरे टाइम ना प्रोग्राम हो रही
1: प्रोग्राम अफजल खटक के टीम प्रोग्राम का हो का ना
0: जी जी
1: तकरीबन यूनिम साल की थी।
0: अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बल मोहम्मद खान दारा तू अच्छी आवाज लगा तो प्रोडक्ट इस्तेमाल है ता तो बखा मखा रिजल्ट मिलावी की का ना जक इस्तेमाल है जक प्रोग्राम तम राजी मुसर अखपल आवाज उम शरीक है नुसंग अखपल मलगुरु ता अखपल कजन ता दगा मशवरा वर कड़ी रे चिता सु हमरा उले दजान द पारे इजना
1: हां बिल्कुल चितला यो सारी रिजल्ट दे तीनों पचार द के बल से उमर सबे ता नबी अले सलाम हदीस हम द चियो शायता पर फायदा दर की नो अगा बलता रसवल कर रही की नमुंगा इजना कॉस्मेटिक सिनेमा फायदा रा कायदा मुंगा पदा मा मुंग बने फर जुड़ी की मुंग बलता ता फायदा हम रसाओ मुंग पल कजन आसपास स्नाइपर जी जमुंगा ता मा हम तक फायदे बरा की वयली थी।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल अंज कनन जस्ता सुकाल जुम जान सर डे डे रख लमा अजम खैर देनन दे द प्रोडक्ट हवाली से रकम खबर हुशी नन तासु सर नेटवर्क टिक दे मम राशिद दुई सर बस कल नेटवर्क टिकी लकमेश की ओरस दो जमा पर खेल नेटवर्क डे ज्यादा बराबर ही चदवानी नमू तकाल राजी मैसेज राजी आओ नन रात नेटवर्क दा से खैस्ता कारे दो दमाल खैर दे नन दे जमुन खबर कमी हुशी खुशी दवानी और द टांग खाल को कॉल्स मुंगजान सर डे ज्यादा वाह
1: जी बिल्कुल द प्रोडक्ट टू द एडवर्टाइजमेंट कॉल इज रत्न सजकत यो प्रोडक्ट खरीद अल खल्क लवर कावी नो खल्क हम खस से खुश हवी कना यो सही रिजल्ट नदर कावी नो गश खल्क हम न खुश हवी नो सा मुंग डेरा शुक्रिया द कहो जे सा मुंग द प्रोडक्ट टू एडवर्टाइजमेंट नन प्रे खो द ओ मुंग त रे कॉल टाइम रोको
0: डेरा माने न जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह द जमुंगा आ चिकम दे हक ते औ द जमुंग द पर यो खुशकिस्मती रा चिता सुसर जमुंग खबर युशी
1: जी
0: मनाना अफजल बरो खुशहाल डेरा मनाना जी खुशहाल ओके जी अल्लाह हाफिज।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: आपका अपना रेडियो रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
3: Welcome to Radio Aman 88.4.
4: You are listening to Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
7: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
8: और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है, स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर

अच्छा, इसी तरीके से अगर कोई शख्स किसी खातून पे तेजाब फेंक देता है, उसको ज़ख्मी कर देता है, तो उसकी कानून में क्या सज़ाएं मौजूद हैं? हमारे पास पाकिस्तान पिनल कोड में दो सेक्शंस मौजूद हैं। एक है 336A, जिस तरह कोई कत्ल करता है तो हम 302 लगाते हैं, तो इसी तरह अगर कोई तेज़ाब से या किसी भी और तरीके से किसी को जलाने की कोशिश करता है तो उस पर 336B लगता है। 336B ए इस जुर्म को डिफाइन करता है, बी उसकी सज़ा बताता है। सेक्शन कहता है कि हूएवर इंटेंशनली आर नोइंगली कॉजेज आर अटेम्प्ट्स टू कॉज हर्ट बाय मींस ऑफ कोरोसिव सब्सटेंस इंक्लूडिंग एसिड poisons or any substance deleterious to the human body that defaces, disfigures or destroys a human part is guilty of the crime. उसने कहा कि अगर कोई शख्स, कानून कहता है कोई शख्स तेजाब से, किसी और मादे से या किसी भी और जरिए से किसी दूसरे शख्स को, इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तेजाब फेंक दिया, कोई चीज़ उसको खिला दी, पिला दी, उसका कोई जिस्म का हिस्सा अलग कर दिया इस तरह से, यानी उसको इल्म हो कि ये जो चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये जहरीली है, ये तेज़ाबी है, ये नुकसान पहुँचा सकती है, तो वो जुर्म का इर्तकाब करता है। और उस जुर्म की सज़ा 336B कहता है कि जी मिनिमम, कम से कम जो है वो 14 साल रिगोरस इम्प्रिजमेंट, कम से कम 14 साल कैद बामुशक्कत जिसको हम कहते हैं, और मैक्सिमम उम्र कैद, साथ में 5 लाख से कम का जुर्माना ना हो। यानी अगर कोई शख्स किसी पे ऊपर तेजाब फेंक देता है तो ऐसे, चाहे वो औरत पे फेंका है, मर्द पे फेंका है, ये मैटर नहीं करता। आप अगर किसी मर्द पे भी तेजाब फेंक देते हैं तो उसकी सजा भी यही है, औरत पे तेजाब फेंका है तो उसकी सजा भी यही है। सज़ा क्या है? सज़ा ये है कि आपको कम से कम 14 साल की कैद बामुशक्कत और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद बामुशक्कत हो सकती है। कैद बामुशक्कत क्या होती है जी? कैद बामुशक्कत, या इंग्लिश में उसको कहते हैं रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, इसका मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे आसानी से बैठ के जेल नहीं गुजारेंगे, बल्कि आपसे मुश्किल काम करवाए जाएंगे, आपसे पत्थर तोड़वाए जाएंगे, आपसे मजदूरियां करवाई जाएंगी जेल के अंदर। आपसे जो है ना वो सज़ाए बमुशक्कत का मतलब ये होता है कि मुश्किल काम करवाए जाएंगे, चक्की में आटा पिसवाया जाएगा, आग वाला काम करवाया जाएगा, ईंटें बनवाई जाएंगी। तो इस तरह के जो मुश्किल काम आपसे करवाए जाते हैं तो उनको हम कैद बमुशक्कत कहते हैं, यानी आप सुकून से जेल नहीं काटेंगे, आपका वो सुकून बर्बाद किया जाएगा क्योंकि आपने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। तो ये सज़ा मुकर्रर की गई कानून की तरफ से, साथ में आपको उम्र कैद भी हो सकती है और साथ में कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, ज़्यादा लिमिट नहीं है। वो फिर जज डिसाइड करेगा कि 1 करोड़ देता हूँ, 2 करोड़ देता हूँ, 3 करोड़ देता हूँ, 5 लाख देता हूँ, 6 लाख देता हूँ, तो ये जज की मर्जी होगी कि वो कितनी सज़ा सुनाते हैं। ये जी हमारे पास कानून साजी की गई 2011 में, और इसी ही वजह से की गई जहाँ पे हमारे मुल्क में तेजाब गर्दी के वाकयात जब बढ़ते चले गए तो इसी वजूहात की बुनियाद पर ये कानून साजी 2011 में की गई। इससे पहले ये कानून मौजूद नहीं था। अब जो वाकया हमारे पास हुआ बलूचिस्तान की एक डॉक्टर साहिबा के साथ, तो उस डॉक्टर साहिबा जो क्या कसूर होगा उनका अल्लाह जानता है, या उन्होंने क्या किया होगा ऐसा जैसे उनको इतनी बड़ी सजा भुगतने को मिली, तो उनका शायद इंसाफ मौके पे हो गया कि उस मुलज़िम को पुलिस ने मुकाबले में मार दिया गया है। अलबत्ता कानून पुलिस को रास्ता देता है। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, इस पर मैं बात करूंगा कि जी पुलिस कौन होती है, किसी को कत्ल करने वाली पुलिस के पास तो ये इख्तियार मौजूद नहीं है, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, पुलिस कब इस तरह का काम कर सकती है।

अब अगर कानून की बात करें तो कानून स्पेसिफिकली सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी पुलिस को इख्तियार देता है कि वो किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर कोई मुलजिम है जो संगीन जराइम में मुलव्वस है और ऐसा मुलजिम जो संगीन जराइम में मुलव्वस है उसको अगर गिरफ्तारी उसकी मतलूब है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने जाती है, अब वो अपनी गिरफ्तारी देने के बजाय वहां से भागने की कोशिश करता है, या जी पुलिस के ऊपर उल्टा फायर कर देता है, पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर देता है, भागने की कोशिश कर रहा है, खुद को वहां से निकाल रहा है, पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और पुलिस इस नतीजे पे पहुंची है कि अगर हमने इसके ऊपर फायर न किया, हमने इसको मारा नहीं, तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। और उसने जुर्म भी ऐसा

इसके अलावा एक और बड़ा दिल दहला देने वाला वाकया लाहौर में पेश आया, उस पर भी मैं बात करूंगा। चूंकि हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं खासकर, वहाँ पे जो अमीर तबका है, यानी जो इलीट क्लास होती है या अमीर लोग होते हैं, वो घर में काम करने के लिए बच्चियों को रखते हैं, लेकिन उनको वो ऐसे रखते हैं कि परमानेंटली वो ख्वातीन उन्हीं के घर में रह रही होती हैं, वो बच्चियाँ उन्हीं के घर में रिहाइश पजीर होती हैं। यानी बड़े शहरों में जो आसपास गांव होते हैं, गांवों से लोग बच्चियाँ ले आते हैं, उनके माँ बाप को महीने के पैसे देते हैं और वो बच्चियाँ घर में काम करती हैं। अब जो बच्चियाँ घरों में काम कर रही होती हैं, वहाँ पे अमीर ज़ादे मौजूद होते हैं, तो उन अमीर ज़ादों की ये 50% से ज़्यादा बच्चियाँ जो हैं उन अमीर ज़ादों के ज़ुल्म व सितम का शिकार बन जाती हैं। पाकिस्तान में हर महीने आपको 3-4 ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे ऐसी छोटी बच्चियाँ जो किसी के घर में काम कर रही होती हैं वो रेप का शिकार हो जाती हैं। यानी वो जो अमीर ज़ादा है, मालकन का बेटा, कहीं पे वो मालिक खुद, यानी एक दिल दहला देने वाली एक वीडियो सामने आई थी, शायद आप लोगों ने देखी हो, कि एक छोटी 12 साल की बच्ची जिसका जो मालिक था वो रेप कर रहा था और वो रेप अपनी बीवी के सामने उसका करता रहा और वो बीवी वहाँ पे मौजूद होती है और बच्ची का हाथ तोड़ा हुआ होता है और वो वहीं पे फर्श पे बिलबिला के वहीं पे मर जाती है, फर्श पे पड़ी पड़ी दर्द से वो मर जाती है। ऐसे होलनाक वीडियोस हमें देखने को मिले। अब पिछले दिनों एक 18 साल की मासूम लड़की जो कितने सालों से किसी लाहौर में किसी के घर काम करती रही और वहाँ मालकन का बेटा और उसका ड्राइवर मुसलसल उसका जिंसी इस्तेहसाल करते रहे और जब वो उससे प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी प्रेगनेंसी को दूर करने के लिए वो उसको ले गए डॉक्टर के पास और जब उसकी प्रेगनेंसी हटाने के लिए उसको दवाइयाँ दी गई तो उससे उसकी मौत वाकिया हो गई। और मरने से पहले उस लड़की ने एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया और उसमें उसने कहा कि मुझे मारने में ये लोग शामिल हैं, यानी मेरे साथ ये करने में मालकन का बेटा और उसका ड्राइवर शामिल हैं। पर्चा दर्ज कर लिया गया, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जुल्म की इंतहा देखें, क्योंकि हमारे माशरे में शादियां मुश्किल कर दी गई हैं, शादियां करना तकरीबन नामुमकिन होता चला जा रहा है, इतना मुश्किल कर दिया गया है कि लोग जिना की तरफ चलते चले जा रहे हैं। जिना आसान है, शादी मुश्किल है, जिसकी वजह से हर एक बंदा जो है वो इस तरह के गुनाह में मुलव्वस होता चला जा रहा है और उसका शिकार फिर बहुत सारी मासूम बच्चियां हो जाती हैं, बहुत सारे दरिंदे जो हैं वो उनको नोच के खा जाते हैं। तो इसमें एक और बात भी मैं यहाँ पे आप लोगों के इल्म में लाता चलूँ कि अगर कोई बच्ची जिसकी उम्र 18 साल से कम है, 15 साल, 16 साल, 14 साल, 13 साल, और वो अपनी मर्जी से आपके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करती है, तब भी अगर उसने अपनी मर्जी से जिनसी ताल्लुक कायम किया है तब भी आप के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज होगा। ये बात अपने जहन नशीन कर लें, कोई बच्ची 14 साल, 15 साल, 16 साल की बच्ची है और वो अपनी मर्जी से आपके साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर रही है तो कानून के मुताबिक आप रेप कर रहे हैं और इस रेप की सज़ा आपको उम्र कैद भी दी जा सकती है, सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो इस चीज़ का आपने जहन में रखना है कि सिर्फ मर्जी हासिल कर लेना, जिना तो आप कर ही रहे हैं ना, उसकी सज़ा तो अलग पड़ी हुई है। मर्जी भी अगर आप कहते हैं कि मैंने मर्जी से किया तो इसका मतलब जुर्म का इकरार तो आपने कर लिया, जब जुर्म का इकरार कर लिया तो यानी जिना के आप मुर्तकिब हो गए और जिना जब जिना ऑर्डिनेंस लगेगा तो आपका बेड़ा गर्क होगा, वहाँ पे 100 कोड़े आपको लगेंगे, अगर आप गैर शादीशुदा हैं, शादीशुदा हैं तो आपको संसार किया जाएगा। इसके अलावा अगर लड़की आपके खिलाफ FIR कर दे तो तब आपके खिलाफ पर्चा भी होगा और ये नाकाबिले राजीनामा जुर्म है, इस जुर्म में राजीनामा भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है।
اور معاشرے میں سے ان برائیوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4.
0: It's 1 o'clock.
3: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: More hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
4: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4।

0: तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांग की नशिया, हमारे साथ रहे, हमारे साथ रहे।
1: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुनफ़े खून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

जनाब तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है जनाब केसर नेचर पाकिस्तान की, ये आवाज है सेहत की, ये आवाज है शिफा की, और ये आवाज है खूबसूरती की। जनाब सुपैर की चार बजती, जनाब आप अपने शहर के जी जनाब फेमस एफएम यानी कि डेरा में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91, और अगर आप मौजूद हैं पहाड़पुर में तो रेडियो पैगाम 97.4, और अगर आप टांग में मौजूद हैं तो रेडियो अमन 88.4 के ऊपर सुनते हैं केसन की आवाज, केसन का मैटनी टाइम जिसको हम कहते हैं केसन टी टाइम शो। तो जनाब इन तमाम शहरों के अंदर मौजूद तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटी, चाचा एंड चाची, माम एंड मामी, दादा एंड दादी एंड नाना एंड नानी, ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों को खलील ताबे शमान का सलाम, ढेर सारी नेक तमन्नाएं, ढेर सारा प्यार आप सभी के नाम। तो जनाब कैसे हैं आप सभी लोग? जनाब हमेशा की तरह मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह फाइन एंड शाइन, चमकता हुआ, दमकता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ चहचहाता हूं, मेरे तमाम जाने वाले, तमाम दोस्त, तमाम फ्रेंड्स बिल्कुल भी इसी तरीके से खैरियत और अफियत के साथ होंगे, और आज का दिन बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। जनाब हमेशा की तरह ढेर सारी बातें, हाँ जनाब बहुत सारी बातें, कितनी बातें हम आप लोगों के साथ करते हैं इस घंटे के अंदर, और जितनी बातें भी करते हैं आप यकीन कीजिए कि वो सारी की सारी जो होती है ना वो आपके फायदे के लिए होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके डिपेंड करता है कि आप कौन सी मुफीद बातों को अपने पल्लू के साथ बांधना चाहते हैं, और कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना चाहते हैं। जनाब एकदम फिर से पहाड़पुर वालों को जनाब ज्वाइन करने के ऊपर ढेर सारा वेलकम, और पहाड़पुर मेरी जान है, पहाड़पुर के लिसनर मेरी जान है, मेरी कंपनी की पहचान है, मेरी कंपनी की शान है। जी जनाब चार दिनों की दूरी के बाद जो है बिल आखिर एक दफा फिर से मेरी आवाज जो है आज पहाड़पुर वालों को सुनने को मिल रही है। अपग्रेडेशन कंप्लीट हुई है 97.4 की, एंड होपफुली कि जनाब आज 97.4 पर आप मेरी आवाज को बहुत ही प्यारा सुन रहे होंगे, बहुत ही क्लियर और नीट सुन रहे होंगे, और दूर दराज के इलाकों से भी मुझे सुन रहे होंगे। तो जनाब अगर आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद हैं कि जहां पर आपको पहले 97.4 नहीं आता था, और अगर आज आपको आवाज आ रही, मुझे स्पेशली बताएंगे पंजाब के लोग जनाब, जो जनाब बिलोट के आसपास रहते हैं, चश्मा के आसपास रहते हैं, मियांवाली के आसपास रहते हैं, कलूरकोट से आगे रहते हैं, ठीक है जनाब शालम में रहते हैं, दरिया खान और बक्कर से आगे के इलाकों में, और इसके अलावा चहकान के इलाकों में, या फिर हिम्मत और इनके इलाकों में जहां पर पहले हमारी आवाज बहुत अच्छी जाती थी 97 की, तो बताएंगे आज के भाई अपग्रेडेशन कितनी सक्सेसफुल हुई है 97.4 की मैनेजमेंट की, कि जनाब चार दिन हमारा एफएम बंद रहा, इस वजह से कि जनाब आप लोगों तक जनाब जो है रेडियो पैगाम जो है बहुत अच्छी तरीके से जा सके। तो जनाब पहाड़पुर के बासी जो यूजर है वो हमें जरूर आज बताएंगे कि भाई क्या वाकई आपकी हम रेडियो पैगाम की आवाज को आप तक पहुंचाने में सफल हुए हैं, और कितने हुए हैं, और कौन से नए इलाकों में जो है रेडियो पैगाम 97.4 को

ग्रामीण ग्राम में इंसान की जिंदगी के अंदर बहुत सारी मनाजिल आती हैं और दो मंजिलें जो इंसान की जिंदगी में आती हैं ये जरूर आती हैं। ठीक है जनाब, या आ चुकी होंगी आपकी लाइफ के अंदर, या शायद हो सकता है आप किसी एक फेज से गुजरे हों और दूसरे फेज अभी आप तक ना देखा हो। तो जनाब एक फेज आपकी लाइफ का, आपकी जिंदगी का जो होता है वो जवाल होता है, ठीक है जनाब, और दूसरा फेज जो होता है वो अरूज होता है। एक इंसान अगर वो मेहनती बंदा है तो वो खुद को अपनी मेहनत से, अपनी कावज से, लगन से, खुद को जवाल से निकाल कर अरूज की तरफ ले सकता है। कहते हैं कि जो शख्स एक दफा अरूज के ऊपर पहुंच जाए ना और फिर वो गिर जाए तो आप उसकी हमेशा मदद किया करें। अगर आप समझते हैं कि कोई बंदा एक वक्त अरूज के ऊपर था लेकिन अभी वो जवाल पजीर हो गया, अभी वो शख्स जो अरूज तक पहुंचा है ना उसे सारे रास्ते पता है अरूज तक पहुंचने की, कोई ऐसे कामयाब नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते भूल कर ही कोई अपनी मंजिल तक की तरफ पहुंचता है। अगर कोई शख्स आपकी लाइफ में, आपके दोस्त अहबाब में, रिश्तेदारों में कोई एक ऐसा है कि आपने उसका अरूज देखा है और वो जवाल पजीर हो गया है तो उसकी मदद करें। उसे कामयाबी के सारे रास्तों का पता है, वो उन्हीं रास्तों के ऊपर फिर से जा सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल किया करें जनाब कॉल्स को, थोड़ा सा थोड़ी मुझे बात कर लेने दिया करें। आप आते ही जो है कॉल्स शुरू कर देते हैं, फिर मेरी बात के अंदर जो है क्या कहते हैं जान नहीं रहती, तवज्जो इधर उधर हो जाती है। तो अब देखें बार बार कॉल्स आपकी आ रही हैं भाई, कॉल्स काइंडली जो है 10-15 मिनट वेट कर लिया करें, नहीं तो फिर मजबूरन हमें फ्लाइट मोड लगाना पड़ता है ताकि हम अपनी बात पूरी कर सकें। तो बात कर रहे थे कि जवाल और उरूज हर किसी की जिंदगी में आना है, जो अरूज से जवाल की तरफ आ जाए ना उसकी जरूर मदद किया करें, वो आपको एक दफा फिर उसी अरूज के ऊपर जाके दिखाएगा क्योंकि उसे सारे रस्तों का पता होता है कि वो किस तरह अरूज तक पहुंचा था। किसी की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, वसाइल की कमी की वजह से वो उस मंजिल तक फिर से नहीं पहुंच रहा होता कि वसाइल कम होते हैं, लेकिन अगर आपके पास वसाइल हैं तो ऐसे बंदे के ऊपर अंधा एतमाद कीजिए, वो आपको 10 रुपए नहीं 15 रुपए करके लौटाएगा। अगर आप कामयाब बंदे को जो जवाल की तरफ आ गया है उसको आप जो है हेल्प आउट करेंगे फिर से समझने के लेकिन कहते हैं कि जो जवाल में संवर जाए वो तारीफ के काबिल होता है। बाज लोगों को कोई मदद नहीं करता जब वो जवाल में होते हैं लेकिन फिर भी खुद को संभाल लेते हैं, तो कहते हैं कि ऐसे लोग तारीफ के काबिल होते हैं। और जो अरूज में, अरूज इंसान को बिगाड़ देता है, अरूज की ये खामी है, जवाल की भी एक खूबी है और अरूज की एक खामी। जवाल की एक खूबी है कि जवाल जब आता है इंसान के ऊपर तो इंसान बहुत आजीज हो जाता है, उसे सारी अपनी गलतियां, अपने गुनाह याद आने लगते हैं, वो अल्लाह ताला के सामने शर्मसार हो जाता है, झुक जाता है, सरेंडर कर देता है कि या परवरदिगार मैं क्या कर बैठा हूं। ये खूबी है, ये जवाल की बहुत बड़ी खूबी है कि जब आप सरेंडर कर देते हैं अपने रब के सामने कि मैं क्या कर बैठा हूं। और उरूज की जो खामी है वो ये है कि आपके अंदर अकड़ आ जाती है, आपके अंदर आप बिगड़ जाते हैं। अरूज हमेशा इंसान को बिगाड़ देता है। तो इन दोनों सूरतों में जनाब, जवाल में अगर आपने खुद को संभाल लिया और अरूज में अगर आपने खुद को बिगड़ने से बचा लिया तो भाई चैंपियन है आप, चैंपियन। जी जनाब, मुझे कहते हैं खलील दावेश जवान और मैं हूँ केसन कंपनी नेचुरल पाकिस्तान को चलाने वाला बंदा है ना चीज जनाब, और ढेर सारे प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हैं। पिछले हफ्ते मैं शो में आया, बहुत बरहम था अपनी मैनेजमेंट की, प्रोडक्शन मैनेजर उसामा की तरफ से कि भाई ईद के ऊपर आखिर शॉर्टेजेस क्यों रही हैं, लेकिन उस भाई ने, छोटे भाई है मेरे, इतना सीरियस लिया मेरी उस गुस्से को कि उस बेचारे ने एक हफ्ते के अंदर जो है सारी प्रोडक्शन ओके कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मेरे सामने जो रिपोर्ट आई है जी, केसन की कोई भी प्रोडक्ट इस वक्त शॉर्ट नहीं है। ये मेरे लिए एक ऑनर के लिए, मालिक के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि भाई आपका कस्टमर किसी दुकान के ऊपर जाए और वो खाली ना लौटे, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक कंपनी के मालिक की कि वो चीजों को शॉर्ट नहीं होने देता। तो अब वो सूरत हाल है आज के दिन में, ठीक है जनाब, के अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी 30 की 30 प्रोडक्ट जो है फरवानी के साथ मार्केट में मौजूद है, 4-5 प्रोडक्ट जो हमारी शार्ट हो गई थी बीच में और उनको हमने जो है एक ही जो है हफ्ते के अंदर उनको रिस्टोर किया है,
और एक दफा फिर से, यानी कि जैसे ब्यूटी स्प्रे नहीं था, जैसे लवली फेस वॉश नहीं था, जैसे हाजमा कंट्रोल सिरप नहीं था, तो वो फिर से रिस्टॉक हो गई है सब कुछ जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। और आप केसन शॉप के ऊपर जाएं डेयर रसमिल खान में, या आप टांक में मंसूर जनरल स्टोर या किसी भी स्टोर के ऊपर जाएं, या फिर आप जो है पहाड़पुर में हसीब जनरल स्टोर, हैदर जनरल स्टोर, नवीद जीशान, यानी कि ये तमाम हमारी दुकानें हैं जहां पर आपको केसन के प्रोडक्ट जो है मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को पिछले हफ्ते में जनाब के आप लोगों को केसन के प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे जनाब। शॉर्टेज इसलिए होती है कि जब किसी कंपनी की डिमांड बढ़ती है और प्रोडक्शन पीछे से नहीं बढ़ाई जाती। ये हमसे गलती हुई, जब डिमांड बढ़ गई टांक में भी, पहाड़पुर में भी, हर जगह, तो प्रोडक्शन की तरफ जो है तवज्जो नहीं की, प्रोडक्शन वही चल रही थी, तो जिसकी वजह से ये बीच में एक गैप आ गया था और चीजें शॉर्ट हो गई थी। और दुकानदार भी गुस्से थे, लिसनर भी गुस्से थे कि हमारी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रही, तो इंशाल्लाह आज से आपको मिलेंगी। और स्पेशली जो हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप है, अच्छा जी, खुशखबरी है, खुशखबरी कि एक तो हमने इसकी कीमत कम कर दी है। पहले 130 रुपए इसकी कीमत थी, 180 रुपए इसकी कीमत थी, 180 रुपए जो केसन का सेरिसिड हाजमा कंट्रोल सिरप है, इसकी कीमत थी 180। इतना महंगाई का दौर है इस वक्त, और जनाब हर कंपनी अपनी प्राइसेस को बढ़ा रही है, लेकिन हमने आप लोगों के साथ एक कमिटमेंट की थी कि जिस प्रोडक्ट को ढेर सारा प्यार मिलेगा ना आवाम की तरफ से, हमारे यूजर जितना हमारी किसी प्रोडक्ट को ज्यादा पसंद करेंगे, हमारा दावा वादा है कि हम उस प्रोडक्ट की कीमत को कम करेंगे। यानी कि पहले अगर 10 बिकती थी, वो 15 बिकना शुरू हो गई, तो हमारी सेल बढ़ गई, हमारा मुनाफा बढ़ गया, तो वो उस मुनाफे में आपको हिस्सा हम वापस लौटाएंगे। ठीक है जनाब, तो 180 रुपए से हमने जनाब इसकी कीमत 150 रुपए कर दी। अब कोई दुकानदार रियायत करना चाहे तो 140 में भी आपको दे सकता है, 130 में भी दे सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिक्स रेट इसका जो है वो 150 रुपए है। क्या है जनाब केसन का? केसन हाजमा कंट्रोल सिरप। जी जनाब, क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में?

0: जी जनाब, केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप डिमांड ज्यादा होने की वजह से, पॉपुलैरिटी ज्यादा होने की वजह से, लोगों को फायदा ज्यादा देने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉपुलर ब्रांड बन चुका है इस वक्त मार्केट का। और ये वो प्रोडक्ट है जनाब, केसन की जो हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट है ना, ये दवाइयां नहीं है भाई, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है जनाब, ये सप्लीमेंट है कि हम आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट से आप लोगों को शिफा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो आप बगैर डॉक्टर के कंसल्टेशन के इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये कोई केमिकलाइज चीज ऐसी नहीं है जैसे कि आपने दर्द वाली गोली ले ली अपने अपनी तरफ से, और वो चूंकि केमिकलाइज फार्मूला है उसने केमिकल एक्शन दिखाना है आपके बॉडी के अंदर, तो वो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन केसन के जो प्रोडक्ट है, जैसे वेट कम पेट कम है, जैसे हमारा शिफाय दर्द है, जैसे गो पिंपल है, या फिर जैसे हाजमा कंट्रोल सिरप है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। ठीक है जनाब, आप विदाउट कंसल्टेशन के भी इसको यूज कर सकते हैं। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि गर्मी के अंदर जितने मैदे के मसाइल बढ़ते हैं, सर्दियों के अंदर नहीं बढ़ते हैं। उस दिन पे मैं आपको बता रहा था कि जनाब गर्मी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो जरासीम होते हैं, उनकी अफजाइश बहुत तेजी के साथ होती है, उनकी प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं, प्रोडक्शन नहीं होती है, रिप्रोडक्शन जो होती है, रिप्रोडक्शन वो बहुत जल्दी होती है। गर्म और मरतूब मौसम में खाने पीने की अशिया आप देखते हैं कि अक्सर जनाब बैक्टीरिया, जैसे कि साल्मोनेला एक बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, इन्होंने मेडिकल पढ़ी होगी तो उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा ये बैक्टीरिया बहुत नुकसानदेह होते हैं, साल्मोनेला टाइफी और साथ में इकोलाई पी मुरब्लस। ठीक है, ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि गर्मी के अंदर आपके घरों के अंदर घुस जाते हैं जनाब। ठीक है जनाब, जबरदस्ती गुजर जाते हैं, खाने पीने की अशिया में चले जाते हैं, और फिर क्या होता है कि जनाब बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। सबसे बड़ा फूड पॉइजनिंग होता है कि जनाब खाना खाते हैं तो जहर बन जाता है, जहर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बहुत सारे लोग खाना जब खाते हैं तो कुछ देर के बाद वो कुछ ऐसा होता है कि आपकी कोई चीज बाहर पड़ी होती है, ये साल्मोनेला टाइफी और पी मुरब्लस इकोलाई, इकोलाई आई थिंक अगर मैं भूल नहीं रहा था, इकोलाई जो है नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, सो उसमें ये जो साल इकोलाई है ये बहुत खतरनाक होता है। तो ये आपकी पड़ी हुई चीजों में जब चला जाता है और खाना खा लेते हैं तो क्या होता है जनाब के आपके आपको फिर खट्टे डिकार आना शुरू हो जाते हैं, आपको कड़वा सा कुछ लिक्विड आपके मुंह को आता है, वो फूड पॉइजनिंग होती है, आपका खाना जो है जहर बन चुका होता है। अब ऐसी सूरत हाल में भी आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आपके पास हाजमा कंट्रोल सिरप पड़ा है और आपको लग रहा है कि फूड पॉइजनिंग आपको हो गई है और खट्टी डिकारें शुरू हो गई हैं और अंदर का लिक्विड आपकी खुराक की नाली से मुंह की तरफ आ रहा है, बहुत ही खट्टा है, ठीक है जनाब, इसका मतलब है फूड पॉइजनिंग आपको हो गई है, तो आप हाजमा कंट्रोल पिएंगे तो जनाब अगले 10 मिनट के अंदर शांत होंगे। अगले 10 मिनट के अंदर आज कौन हमारे पास आया हुआ था केसन शॉप पर, शाह साहब इस तक सुन रहे होंगे, दराबन चुंगी से मेरे ख्याल में उनका, और वो आए हुए थे हफ्ता पहले, वो शिफाय दर्द लेके गए थे, हमारे साइलेंट लिसनर है, और आज फिर वो हाजमा कंट्रोल लेने के लिए आए हुए थे। तो वो कह रहे थे कि भाई मैं जो शिफाय दर्द लेकर गया हूं ना, यकीन कीजिए कि मेरी बीवी 80% ठीक हो चुकी है, वो लंगड़ा के चलती थी पहले, ठीक है जनाब, और बड़ा मसला था, तो मैंने जैसे इस्तेमाल किया है तो आप यकीन करें कि वो खुश हो रहे थे, लव मैरिज थी उनकी, तो लव मैरिज में तो फिर वैसे मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत होती है, और किस्मत वाले हैं कि उनको मर्जी की मिल गई, तो हाँ जी, और माशाल्लाह इस उम्र में, जिस उम्र में वो थे माशाल्लाह मेच्योर उम्र थी, उसमें भी इतना ही ख्याल रखने अपनी बीवी का, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को हमेशा सलामत रखे, तो वो बहुत खुश थे बेसिकली, तो पार्टनर की खुशी उनके चेहरे के ऊपर झलक रही थी कि मेरी बीवी माशाल्लाह ठीक हो रही है, 80% कहते हैं कि उनके जोड़ों का दर्द खत्म हो गया, तो उनके मैदे का मसला रहता है, तो मैं इंतजार में था कि ये हाजमा कंट्रोल कब आएगा, तो मैंने उनको, अच्छा जी अभी जो ये हमारा नया बैच आया है आप लोगों के पास, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले हाजमा कंट्रोल से, फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, इसको हमने मजीद बेहतर किया, एक तो ये वाइट होगा अब, ठीक है जनाब, वाइट ओपिक है, ठीक है जनाब, और साथ में क्या होगा कि ये गाढ़ा है, पहले जो आप सिरप आपको मिल रहा था ये उससे बहुत इंप्रूव किया हमने, इसको कीमत कम की है लेकिन इसकी क्वालिटी को बहुत बेहतर किया हमने, ये जब आप पियेंगे ना आपको पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज इन्होंने लॉन्च कर दिया, रीलॉन्च सेकंड बैच आ रहा है हमारा आप लोगों के पास ना, एक तो आप ये पहले ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा हल्का ग्रीन होता था, अभी जो है ना ये बिल्कुल व्हाइट होगा, बिल्कुल व्हाइट और गाढ़ा, पहले से ज्यादा ये गाढ़ा होगा, यानी कि मुंह में डालेंगे तो ढक्कन के अंदर शहद की तरह रह जाता है, फिर से खाली नहीं होता। तो ये पहले से ज्यादा महंगा है, लेकिन आपको हम बचत दे रहे हैं। आप ये पियेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आपको ये जो इम्प्रूव हमारा फार्मूला है हाजमा कंट्रोल का, ये कैसे लगा। अच्छा, तो वो भाई कह रहे थे शाह साहब कि भाई मैं इसलिए, फिर मैंने उनको पिलाया, उसी वक्त एक चम्मच पिलाया मैंने, के बताएं, कहते हैं अंदर तक ठंडक। बस आरजे तासीर जो पहले आप हमारे साथ प्रोग्राम करते थे, अभी वो नहीं करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने किसी और कंपनी को ज्वाइन कर लिया है और वो उसका प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है जनाब, तासीर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बेहद शुक्रिया, उन्होंने वक्त निकाला, ईद के दिनों में आए और मेरी छुट्टियां के बावजूद उन्होंने टाइम दिया अपनी छुट्टी को इल्तवा में डालकर। तो लेकिन अभी वो केसन का प्रोग्राम हमारे साथ कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने किसी और कॉस्मेटिक कंपनी के साथ जो है एग्रीमेंट किया है, तो वो अभी उनके साथ रेगुलर प्रोग्राम करेंगे ना। या तो वो भाई बिरादरी के ऊपर आते थे ना, यानी कि दोस्त थे मेरे, तो मैं उनको बुला लेता था कि दो तीन दिन के लिए आ जाओ, तो वो आ जाते थे। तो अभी वो किसी कंपनी के साथ प्रॉपर काम करेंगे। ठीक है जी, उनका अगेन बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा। तो वो भी बैठे थे उस वक्त, उनको फिर मैंने एक चम्मच पिलाया, वो कहते यार जैसे उन्होंने पिया ना चम्मच हाजमा कंट्रोल का, तो 10 मिनट बाद बोला यार ये तो हलक से लेकर ये तो पूरे जिस्म के अंदर ठंडक फैल गई है, क्या चीज है इसके अंदर यार, ये तो मुकम्मल तौर पर कहता है कि मेरी पूरे खुराक की नाली से लेकर मैदे तक बिल्कुल ऐसे लग रहा है किसी ने बर्फ डाल दी हो। तो मैंने कहा ये इलायची, पुदीना, यूकलिप्टस, सौंफ का बहुत ही जबरदस्त किस्म का फार्मूला है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक है जनाब, और मैं कहता हूँ कि हर घर के अंदर ये होना चाहिए भाई, डिस्प्रीन घर में रखते हैं, पैनाडॉल घर में रखते हैं, तो भाई केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप अपने घर के अंदर जरूर रखें। एक तो फूड पॉइजनिंग होती है गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा, पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, पानी की पसीना होता है, पसीना के जरिए जिस्म से पानी और नमकियात तेजी से निकल जाते हैं, पानी की वजह से आंतों की कारकर्दगी सुस्त हो जाती है। आपके बॉडी के अंदर जितना पानी होगा ना, आपकी आंतें उतना काम करती हैं, आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, निजाम, उसमें आपकी आंतों का काम होता है ज्यादातर। तो जितना पानी होगा ना आपके पेट के अंदर, तो आंतें पानी के अंदर जितना रहेंगी उतना अच्छा काम करेंगी, क्योंकि पसीने के थ्रू सारा पानी आपके जिस्म से निकल जाता है, तो कारकर्दगी बहुत ज्यादा मुतासिर हो जाती है, आंतों की डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, कब्ज हो जाएगी, बहुत ज्यादा कब्ज लोगों को गर्मी में होती है। ठीक है जनाब, और इसकी वजह ये होती है कि आंतों में पानी नहीं होता। ठीक है जनाब, पसीने की सूरत में निकल जाता है, शदीद कब्ज और तेजाबियत का बायस बनती है जब पानी की कमी आपके जिस्म के अंदर होती है। तो जनाब हाजमा आपका मुतासिर होगा, अनकंट्रोल होगा जनाब, और कहते हैं कि हाजमे का निजाम सुस्त हो जाता है, शदीद गर्मी में जिस्म अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए खून का जो बहाव होता है ना जिल्द की तरफ ज्यादा और मैदे की तरफ कम कर देता है। ये भी एक नई बात है भाई, ऐसी ऐसी बातें कौन बताएगा आपको। हां जी, डॉक्टर लोग हैं हम यार, पढ़े लिखे लोग हैं। जिसम अपना दर्जा हरारत बरकरार रखने के लिए खून का बहाव जिल्द की तरफ तो करता है, लेकिन मैदे की तरफ खून की रवानी को मुतासर कर देता है, जिसकी वजह से बदहजमी और खाना देर से हजम होगा। गर्मी में एज कंपेयर सर्दी जो है, गर्मी में आपका हाजमा बहुत सुस्त हो जाता है, और ये वजूहत होती हैं जिसकी वजह से आपको हाजमा कंट्रोल सिर्फ केसन का घर में जरूर रखना चाहिए। कुदरती तौर पर गर्मियों के अंदर रुक जाता है, किसी डॉक्टर से जाके पूछते हैं, भाई खलील भाई तो कह रहे थे कि गर्मी के अंदर जो है हाजमा सुस्त हो जाता है, मैदा काम तो सही नहीं करता, हाजमा ठीक नहीं होता। आप पूछ लें उसे कि खलील भाई गलत तो नहीं कह के गए, वो कहेंगे कि खलील भाई बात भी ठीक कह रहे थे, और वो जो कह रहे थे ना कि हाजमा कंट्रोल भी घर में रखो तो वो भी ले जाओ। ठीक है
1: बदहजमी।
0: तो जनाब अच्छा, फूड पॉइजनिंग गैस्ट्रो का मैंने आपको बता दिया, खराब खानी और आलूदा पानी भी डायरिया का सबब बनता है। गर्मी में बहुत ज्यादा लोगों को पेट खराब होता है, बहुत ज्यादा पेट खराब होता है, ये वजह होता है कि जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन हो रही होती है, अफजाइश बहुत तेजी के साथ होती है, और वो खानों में घुस जाते हैं, पानी के अंदर घुस जाते हैं, आपकी दूध खराब हो जाता है, खाने खट्टे मीठे हो जाते हैं। तो वजह यही होती है कि गर्मी में जरासीम बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो जनाब गर्मियों में तली हुई मसालेदार अशिया, सॉफ्ट ड्रिंक का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, गर्मी में बहुत ज्यादा लोग कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे जनाब, कोल्ड ड्रिंक्स आपके तेजाबियत को बढ़ाती हैं, और जिसकी वजह से आपको मैदे के मसाइल बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ते हैं। यही वजह होती है कि फिर मैदे का भारीपन महसूस होगा, खट्टी डिकारे वगैरह आपको आएंगी, हैजे के मसाइल हैं। ठीक है जनाब, ये सारी चीजें। सो कुल मिलाकर बात क्या है जनाब आप लोगों के सामने, वो ये है कि जनाब गर्मी जो है ये सिर्फ आपकी स्किन को खराब नहीं करती है, कि हम आपको बोलते हैं जाफरानी साबुन लगाएं भाई, चेहरा साफ रहेगा। ठीक है जनाब, सूर्य की श्वाएं आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा, एक और प्रोडक्ट हमारी शार्ट थी जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, एक तो हाजमा कंट्रोल की बहुत ज्यादा डिमांड थी, एक प्रोडक्ट जो हम गर्मियों में स्पेशली बहुत ज्यादा हमारी चलती है वो ब्यूटी स्प्रे है, स्किन टोनर। मुझे दुकानदारों के बहुत सारे कॉल, जैसे फ्रेंड्स एंड फैमिली शॉपिंग सेंटर, जैसे कि जीशान, जैसे कि नवीद पहाड़पुर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जनाब, जैसे कि हसीब जनरल स्टोर, जैसे कि हैदर, जैसे कि हसन भाई, सबकी तरफ से ऑर्डर आए हुए थे कि ब्यूटी स्प्रे बहुत ज्यादा लोग मांग रहे हैं। तो भाई ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है कि भाई सिर्फ गर्मी में सिर्फ साबुन से मुंह नहीं धोना है, सिर्फ फेस वॉश से मुंह को नहीं धोना है, बल्कि केसन का ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब ये लगाकर आप घर से बाहर निकलेंगे तो गर्द गुबार, सूरज की तपिश आपकी स्किन को खराब नहीं कर पाएगी, ठीक है जनाब। क्योंकि ये विटामिन सी और अर्के गुलाब से बना हुआ एक मिक्सचर है, जो अर्के गुलाब आपकी स्किन को तरोताजा रखता है, मुरझाने नहीं देता, आपकी झुलसी हुई स्किन, तली हुई स्किन, ठीक है जनाब, हरारा से भरी हुई स्किन को ये ठंडक प्रोवाइड करता है अर्के गुलाब की सूरत में, और विटामिन सी जो है वो सूरज की खतरनाक श्वाएं को रोकता है। तो ये भी अवेलेबल हो चुका है हर जगह, ठीक है जनाब। आप जो जो मेरी बहनें मांग रही थी और ब्यूटी स्प्रे जिन जिनको नहीं मिल रहा था, आज हर जगह हमारा केसन का ब्यूटी स्प्रे जो आपको सिर्फ 200 रुपए में मिलता है, ठीक है जनाब। विटामिन सी और अर्के गुलाब से बना हुआ ये स्किन टोनर है, और गर्मी में ये अपने ऊपर फर्ज कर लीजिए, इसके बगैर आपने घर से निकलना ही नहीं है, इसके बगैर आपने घर से निकलना ही नहीं है जब तक केसन ब्यूटी स्प्रे को स्किन के ऊपर लगा के नहीं जाएंगे। और मैं यकीन कीजिए, आज मैंने प्रोग्राम आप लोगों के साथ थोड़ा सा हटके करना था, लेकिन चलो कल उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुख्तसर आज मैं आपको बताता चलूं, मेरी तो वो तमाम बहनें जिनकी छाइयां जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, जिनकी छाइयां जाती हैं और फिर वापस आ जाती हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि वो क्रीम जो भी लगा रही हैं, हम ये नहीं जबरदस्ती कहते कि केसन की क्रीम लगाएं, केसन की लगाएंगे तो आपका अपना फायदा है, क्योंकि ये वाहिद क्रीम है जो जाफरान से बनी हुई है, जो कि आपकी स्किन के ऊपर गैर जरूरी बालों का खात्मा करती है, ठीक है जनाब, जो कि आपकी स्किन के ऊपर जो गैर जरूरी बाल हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है, क्योंकि इसके अंदर जाफरान मौजूद है। लेकिन अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा रहे तो जो भी क्रीम लगा रहे हैं ना, जो भी इस्तेमाल करें उसके साथ स्प्रे केसन का यूज करें, केसन का ब्यूटी स्प्रे, आपकी छाइयां वापस नहीं आएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूं। कोई भी क्रीम उठा के देख लो, कोई भी ब्रांड आप यूज करते हैं, कोई भी एक्स वाई, ठीक है जनाब, आप दिन के वक्त दो दफा ब्यूटी स्प्रे केसन का इस्तेमाल करें, दो दफा यूज करें, अगर आपकी छाइयां वापस आ जाएं, हालांकि क्रीम आप हमारी नहीं, हो सकता है हमारी लगा रहे हो, लेकिन अगर कोई भी लगा रहे हैं तो गारंटी हम दे रहे हैं आपको, क्रीम किसी और की लगा रहे हैं ना आप, लेकिन गारंटी हम आपको दे रहे हैं कि छाइयां वापस नहीं आएंगी अगर डे टाइम में आप केसन ब्यूटी स्प्रे को दिन में दो दफा इस्तेमाल करेंगे। ये कहानी क्या है ये आपको कल बताएंगे कि जनाब किस तरीके से ये छाइयों को रोकता है केसन ब्यूटी स्प्रे,
1: मतलब
0: लेकिन मतलब क्या है,

अब ये जो तेजाबियत बदहजमी फूड पॉइजनिंग का शोर है इसका तोड़ है आप लोगों के पास, और वो केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप की सूरत में मौजूद है। कीमत को हमने कम कर दिया जनाब, सिर्फ 150 रुपए का आपको मिलेगा। इसके ऊपर रेट मेंशन है जनाब, और पहले से ज्यादा गाढ़ा, पहले से ज्यादा ठंडक देने वाला, पहले से ज्यादा अच्छा सिरप बनाकर हमने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इस दौर का एडवांस फार्मूला है। बिल्कुल जनाब, और इतनी क्वांटिटी चीजों के अंदर है कि अगर आप 24 घंटे में सिर्फ एक चम्मच भी इसका लेंगे तो मैदे के अंदर गर्मी नहीं होगी, बदहजमी नहीं होगी, गैस नहीं होगा, तेजाबियत नहीं होगी। तो जनाब इस प्रोडक्ट के ऊपर टूट पड़े, खरीदे नहीं जनाब, टूट पड़े इसके ऊपर, और देखें कि जनाब ये सिरप, इस सिर्फ एक चम्मच 24 घंटे में, वो लोग जिनको मैदे के मसाइल का शिकार है, जैसे कि उनको बदहजमी हो जाती है। अच्छा, ये भूख लगाने में बहुत जबरदस्त है, किसी को भूख नहीं लगती, तो जैसे अगर दोपहर का खाना खाना है तो 10 बजे इसके 2 चम्मच ले लें, रात का खाना है तो असर के वक्त 2 चम्मच ले लें, फिर आप देखें कि आप कितना खाना खाते हैं। बहुत ही जबरदस्त एपेटाइजर है। बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, भूख लगाने वाले अलग से सिरप बनाती हैं और हाजमे को ठीक करने वाले अलग से सिरप बनाती है, यानी कि डबल डबल पैसे कमाती है। हमने एपेटाइजर प्लस एंटासिड फार्मूला बनाया है, केसन का ये जो हाजमा कंट्रोल सिरप है ये एपेटाइजर प्लस एंटासिड है, यानी कि ये भूख लगाने वाला भी सिरप है और साथ में आपके मैदे को ठंडक, आपके मैदे को सुकून, आपके मैदे को आराम पहुंचाने वाला, आपकी तेजाबियत को, जलन को, गैस को खत्म करने वाला केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप।

0: तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी वो मसला भी हल होगा। खाना, बाज लोगों को भूख नहीं लगती, इसको इस्तेमाल करें, भूख लगेगी आपको। ठीक है जनाब, जलन है, इसके अलावा बदहजमी है, हैजा है, पेट का दर्द, पेट के दर्द में ये बहुत ज्यादा मुफीद है। 1-2 चम्मच पियेंगे तो फौरी तौर पर पेट का दर्द खत्म हो जाता है। मोहम्मद हमजा केमटा मौजूद है हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है हमारे साथ, उनको मौका देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओके जनाब, शायद मेरी आवाज इनको नहीं जा रही। मोहम्मद हमजा खेमटा पिपला माली से।
1: कैसा
0: अच्छा जी, पिपला से सुन रहे हैं मोहम्मद हमजा खेमटा भाई, बताइएगा आपकी तरफ ट्रांसमिशन कैसी है हमारी 97 की। खुश आमदीद रेडियो पैगाम पर, और कहते हैं कि खूबसूरत प्रोग्राम है, सब सुनने वालों को सलाम।

डियर सामीन और डियर नाजरीन, आपको पता है कि हम हर इतवार के दिन 5 से 6 बजे एक प्रोग्राम नशर करते हैं, जिसमें एक ख़ास उनवान होता है और उसी उनवान के हवाले से हम 15-20 मिनट गुफ्तगू करते हैं, उसके मुतलक आपकी राय लेते हैं और इसी तरह हमारा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। तो उसी तरह एक गुजारिश कि हमारा प्रोग्राम पहले से आखिर तक सुनिए और प्रोग्राम सुनने के बाद अपनी खूबसूरत राय दीजिए, क्योंकि आपकी अच्छी राय मेरे लिए भी काबिले कदर है और तमाम जितने सुनने वाले हैं, चाहने वाले, अकीदत रखने वाले हैं, सब के लिए यकसा मुफीद रहेगी। तो इस हवाले से डियर सामईन और डियर नाज़रीन, आप प्रोग्राम सुनते रहिए और ये प्रोग्राम जो है आप ही के लिए है और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और क्यों ना होंगे, क्योंकि हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहती हैं जी।

रिश्तेदारी है जिसके हाँ जिनके साथ रहकर ये फिर उसी तरह डेवलप होता है, उसी तरह वो चीज़ें अपनाता है और अपनाने की वजह से फिर वो जितना बड़ा होता चला जाता है वही बातें उसके अंदर पुख्ता होती चली जाती हैं। तो बचपन ही से बच्चों को प्यार से मोहब्बत से समझाएं। और अल्फाज के इंतखाब में मैं दो लफ्ज़ बोलता हूँ, अगर मैं किसी को कहूँ पश्तों में दे मोर मेड़े दे रवानदा, ठीक है, अगर मैं ये कह दूँ कि मोर मेड़े दे रवानदा, तो फिर आप खुद सोचें कि ये कितना, ये लफ्ज़ तो ठीक है, मतलब आपकी अम्मी का शोहर जा रहा है, उर्दू में कहूँ अम्मी का शोहर जा रहा है तो ये बात गलत है ना। अगर मैं कहूँ चिपलार दे रवानदा, बाबा जी दे रवानदा, अबू दे रवानदा, और किसी को कहूँ हाँ जी कि उर्दू में कहूँ कि आपका अबू जा रहा है, आपका डैडी जा रहा है, हाँ फादर जा रहा है, हाँ जी या आधा साढ़ा प्यू वह पी है, इवें आखेंगे ना सर कि अबू वह पी आई प्यू वह पी आई, अगर उसको मैं कहूँ कि माँ दा मुसाला वह पी आई, ये लफ्ज़ माँ दा मुसाला, अम्मी का शोहर, मोर मेड़ो, ये सारे ठीक हैं, अल्फाज ठीक हैं, मानी भी मतलब, लेकिन चुनाव नहीं है, चुनाव अल्फाज का मानी गलत नहीं है लेकिन अल्फाज का चुनाव गलत है। पश्तों में मोर मेड़ो अगर आप कह दें कि अबू जा रहा है तो ठीक था, आपकी अम्मी का शोहर ये भी ठीक है, लेकिन अल्फाज का चुनाव गलत है, मादा मुसाला, ये अल्फाज तो चुनाव गलत है, बाकी मानी उसके ठीक हैं। तो इस तरह कोशिश करें कि जिस तरह अल्फाज के इंतखाब में मादा मुसाला, मोर मेड़, अम्मी का शोहर, तो अगर इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, फसाद होगा, फासले बढ़ेंगे, रिश्ते टूटेंगे, दिल टूटेंगे, तो ये तो फिर नुकसान हो गया। तो क्यों ना अल्फाज का इंतखाब खूबसूरत तरीके से करें, प्यार से करें, लबो लहजे के अंदर तकबर ना हो, गरूर ना हो, दूसरे की हिकारत मकसूद ना हो अल्फाज के इंतखाब में, तो मेरे ख्याल में हर एक को पसंद भी आओगे, हर एक आपसे मोहब्बत भी करेगा। मिननाक्ष कदजुड़ गठल लगवाड़े, अब मोहब्बत करना शुरू कर दो, हर एक का दिल जीतना शुरू कर दोगे, ये इकराज मैंने बताया, मिननाक्ष कदजुड़ गठल लगवाड़े, अब मोहब्बत करने वाला कभी हिकारत के अल्फाज इस्तेमाल ही नहीं करता, तअस्सुब और नफरत वाले अल्फाज इनका चुनाव नहीं था, उनके अल्फाज में कभी कभी बदबू आ ही नहीं सकती, उसके किरदार में किरदार से किसी को नुकसान हो ही नहीं सकता। हाँ मिननाक्ष कदजुड़ गठल लगवाड़े, इखलास मन शक परदीख पलवल वाड़े, जब भी किसी के साथ मदद करते हो तो बिला इम्तियाज करो, लालच के बगैर करो, तमा के बगैर करो, हीले के बगैर करो, और ये सोच के कल मेरे साथ भी ये काम करेगा, अगर आज मैंने इसके साथ अच्छाई की तो सदका दिया या मदद की तो कल मेरी मदद करेगा, तो ये बात गलत है। अगर आप इखलास से करेंगे तो दुश्मनों का दिल भी जीत जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दिल जीतूं तो फिर आप इखलाक्षकड़े, अब अगर आप मोहब्बत करेंगे और मोहब्बत से पेश आएंगे, मोहब्बत वाली गुफ्तगू करेंगे तो लोगों के दिल जीतना शुरू कर लेंगे, और लोगों के दिल जीतना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम, तोड़ना नहीं है, ये एक सेकेंड में हो जाता है, लेकिन दिल जीतने के लिए जिंदगी चाहिए, 10 साल 15 20 साल महीने चाहिए उसको दिल जीतने के लिए और भरोसा जीतने के लिए। मिननाक्षक दजरुनो गटल लगवाड़े, अगर आपने दिल जीतना है तो आप मोहब्बत करने वाले इखलास वाले काम करना शुरू कर दें, मोहब्बत से काम करना शुरू करेंगे, मोहब्बत भरा लहजा, मोहब्बत भरे अल्फाज, इज्जत एहतराम भरे अल्फाज, इखलास मन सक पर दिख पल वलगवाड़े, अब परायों को अपनाना, अपने तो अपने हैं, पराए दूर को भी अब करीब करना और जो पराए हैं उनको अपना बनाना, उसके लिए इखलास शर्त है, तो इखलास की भी बहुत ज़रूरत होती है हमें कि हम इखलास से काम करें। डियर सामईन और डियर नाजरीन, ज़िंदगी जो है मुख्तसर है, और इस मुख्तसर ज़िंदगी में हम लड़ाई झगड़े नफ़रत तअस्सुब को खुदा हाफिज़ कह दें, क्योंकि ये वक्त आज है कल नहीं होगा, आज मेरे पास है कल तेरे पास होगा, ये तो वक्त कहते हैं रिचेज हैव विंग्स, अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये जो दौलत है ना इसके पर होते हैं, आज मेरे पास है तो मुझसे उड़ के परिंदे की तरह दौलत होती है, कल तुम्हारे पास होगी, फिर उस पर परिंदा जैसे एक शाख से उड़कर दूसरे दाख दूसरे से तीसरे दराख तीसरे से एक चमन को छोड़ के दूसरे चमन में चला जाता है परिंदा, इस तरीके से आज दौलत मेरे पास है, कल तेरे पास होगी, कल किसी और के पास होगी, तो इस तरीके से न दौलत पर फ़ख्र, न गरूर पर तकबर करना चाहिए, फ़ख्र करना चाहिए, न ओहदे पर, न पैसों पर, न बैंक बैलेंस पर, न गाड़ियों पर, न इमलाक पर, न बड़ी बड़ी गाड़ियों पर, न बड़े बड़े महलात पर, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में रह जानी हैं। तो डियर सामईन और डियर नाज़रीन, आपके सामने गुफ्तगू की और छोटी सी कहानी और उस पर थोड़ी सी लोगों की राय भी आई, लोगों के मैसेजेस भी आए, और लोगों ने अपनी राय भी पेश की, और फिर वही बात कि अल्फाज का इंतखाब
खूबसूरत करें, अपने भी अपने तो अपने हैं, पराए भी आपके अपने हो जाएंगे, और जब आप इखलास से काम करेंगे तो इखलास से फिर पराए भी अपने होंगे, और जब आप मोहब्बत भरे अल्फाज और लहजे और रवैये इख्तियार करेंगे तो लोगों के दिल जीतना शुरू कर देंगे। दिल तोड़ना आसान है, इसी तरह दिल जीतना बहुत मुश्किल है। तो दिल की तारीफ और क्या होगी, दिल की तारीफ और क्या होगी, एक आईना जो टूट जाता है। डियर सामेईन और डियर नाजरीन, मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए, और दिल को देखो ना, आईना जो टूट जाता है वो जुड़ जाता है। अब ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे वो जुड़ जाता है, लेकिन जुड़ता है, लेकिन दिल एक ऐसा आईना है जो जुड़ के भी नहीं जुड़ता। आईने के अंदर जब वो टूटता है तो उसके अंदर एक लकीर आ जाती है। आप कोई चीज़ मैजिक वगैरह एल्फी लगाएं तो वो बंद हो, लेकिन तस्वीरें दो दिखाता है वो आईना। इस तरीके से जब इंसान का दिल टूटता है तो इसमें दो तस्वीरें तो नहीं दिखती, लेकिन हमेशा के लिए वो आपसे दूर चला जाता है। तो दिल के जज्बात का, एहसासात का इंतहाई ख्याल रखें। हो सकता है कि अगले प्रोग्राम में मैं इसी पर गुफ्तगू, क्योंकि ये प्रोग्राम अधूरा है, बहुत सारी बातें मुझसे रह गई हैं और करनी थी, लेकिन अगर मौका मिला तो अगले प्रोग्राम में इसका पार्ट टू आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल वही बात

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन। वेलकम टू रेडियो अमन 88.4। यू आर लिसनिंग रेडियो अमन नेटवर्क।
1: वी गॉट मोर हिट्स फॉर यू, सो स्टे ट्यून्ड।
2: 88.4 FM।
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे, अवेलाजी सुनत अमल दे।
5: ओस कचेरे तासु तदा से अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली, ढेर गर्जिदली कड़ी दली हो।
4: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रौड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले, तरला सकवले शे।
5: और द नूरु मालूमातो दे पारा और दगल नंबर काल कवले शे
4: 0319-55-23-404।

0: वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है। वो जो कुन-फ़यकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की नशरियात। हमारे साथ रहिए।

0: Radio Aman Network, News and Information Station. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM. क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।

आधे आधे फुट होते हैं। नो इश्मा सन ब्लैक इस्तेमाल वही इश्मा सन स्क्रीन चिकम जमुन प्रोडक्ट है इश्मा सन ब्लैक तासु यकीनो कही चिदास तासु स्किन दासी केयर कही चितासु दे ता दखपल मख चौकीदार वयले शे गर्मई के यखनई के द यखनई ना किचन ना आओ अक्सर दा मख सुरुशी सोजी गरई तासु इश्मा सन ब्लैक इस्तेमाल वही खा और कोटे लुए ट्यूब और के मिलावी के कम यो ट्यूब दर मिलावी के द इश्मा अखले सही शो। सलाम अलैकुम इकराम भाई इश्मा कलर बकल लॉन्च कवे प इंतजार यू वर्ता फाई का फातिमा कायनात दलंडी वाना और मैं नूर गुर्द में सलाम वरक वालेकुम सलाम जमा होगी खुर इंशाल्लाह कलर व लॉन्च को खो असल के जता सुते हो खबर को मगना प्रोडक्ट लॉन्च की दो के देर से टाइम लगी सही ना और बल खबर अदा दखना छपन नकल के टाइम न लगी लगे यो कस दे अगर यो शीज जोड़ को अवज भी अगर सरा मुकाबले को बज उम अगर शीज रवालम सही दा और वही बानी चिकम दे नो मतलब उमक शांति लिकलू लिकम बस रख पलिक अपने नेम पे चेंज कम और बस चिकम दे नो रामेदान ते कमा सही शो नो ब्यासी हुई दास उख पले हुआ ही ना चरता योकस प अकल बांधे पेपर वर की और योकस प नकल बांधे पेपर वर की तब सो आई नकल वाला बकल कामयाब शी कलम न कामयाबी की सही दा नो दादा ची मुंग कमम प्रोडक्ट जोड़ो कना नो जमुंगा दा अवल कोशिश हुई सौ पर सौ परसेंट चिमुंगा पखपल अकल बांधी जोड़ को पा अकल बांधे जोड़ेदल चिकम दी कना अगब या डेर ज्या टाइम अखली सही शो हो द अगे कामयाबी डेर ज्यात हुई लगता सो इश्मा फार्मूला क्रीमो गो रही दनन न दरे काल शात लाड़ शही सलोर काल 2020 पोरे लाड़ शही पक काल शात लाड़ शही सुम्र द फार्मूलो क्रीमो नो पदे रेडियो के द फार्मूला आग फार्मूला दख फार्मूला दख फार्मूला द वन तासु उगो रही आया कमा फार्मूला बरकरार पाते दा पगो रुस्तो पगो कालो के हाँ कपनियानो सोचो कही कना कम चेतनो रो कपनो इस्तेमाल का उनकी दी औरी दुन की दी कालरान दी उगो रही स्ताजो कपनो सो उखड़ल फार्मूले पसे बदल नामा रहू था कना चेदा चेव वाला दी दादा उरिजो वाला दी दादा एलोवेरा दी दा आग पति दी दादा पति मतलब दा से नमूना बदल शू क्रीमुनोला सही दा रेठूनम बदल शू हाँ यो इश्मा फार्मूला क्रीम दी चे दा अल्लाह करोड़ करोड़ शुक्र दे दा खबर अज पलोयई की न कहू मल्ला दे कल पलोयई की पकबर की न रावली चे यो इश्मा फार्मूला क्रीम दी चे कम पो 2020 की कागजी डबे जेड़ो सही दा सिंगल लिटरेचरो सिर्फ कीमत यो लशल रुपये सेवा शो 300 रुपये तो और से दो ठीक शो ब्या चे कम दे नो सिंग ददी लिकलू सिंग ददे मायारो सिंग ददी क्वालिटी वा बरकरार अदा इश्मा फार्मूला क्रीम ओमा इश्मा फार्मूला क्रीम दी अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट उगो रही खुला उगो रही नूर क्रीमों ने तासो पाफ्तो इस्तेमाल कई ब्याद रतो ही कोर्सू ने दी आखिर के दी ब्यास तासो नंबर हम नूचे ते नंबर दर पसे ब्लैक की दा बस्ता पा स्किन की चली दा बस्ता पा मख की चली जमुंग क्रीम बगो रहे ना बदना अक्सर दासो हम तासो खबर या हो रही है ना हाँ चि माता सो कुम कालू की यार माता इश्मा फार्मूला क्रीम फायदा रहा नकड़ा जोर दादा ने ताकि चल दे द्वेम डबे इस्तेमाल का द्रेम जो तेम बलमर ओड़ा बस ताला फायदा ना दर कही स्ता पैसे जमा पर नसीब की निश्ता जमा द क्रीमो रिजल्ट था नसीब की निश्ता सही दा अल्हम्दुलिल्लाह पल्लकुनो खलक खैबर पख्तूनख्वा के जमुंगा इश्मा फार्मूला क्रीम इस्तेमाल है पल्लकुनो खलक हाँ औ पद्वेमा द्रेमा सलोरमा और रजबाने दमख न दागुना तेर सरी स्तर गुलांदे हल्के खत्म दमख रंग दास खेस्ता दास खेस्ता नोर खोपरे दनन में खपल रो रे जास था कतल कना सही दा माशाल्लाह अगर जमुंगा फार्मूला क्रीम इस्तेमाल ही कना दा इजाज जमा आ गरूर दे चे दनन नमुंगा 15 साल पेल लाड़शू मुंग टोलो के दद दमख रंग चकम दे आगा लग गनम रंगो या तोरो दा से बवायो और माशाल्लाह रेगुलर इश्मा फार्मूला क्रीम इस्तेमाल मुंग टोलो के खेस्ता दे सही दा का वाइट कपड़े वा चाहिए का स्काई ब्लू कपड़े वा चाहिए दागा दुमर खेस्ता स्किन खकारी मखे खकारी खेस्ता दे क्रीमो रिजल्ट और को दा से देर अलग जमा खोरे दे माओ तो पुरुन कतल है शाम पा खुदे बावर के अगबा द स्किन स्पेशलिस्ट ना इलाज का वलो हर आगा वक्त कली क्यों मुंग सरा पा कपनी की ओम ना बार बार बारात लो मारतेल बचे तदा फार्मूला क्रीम इस्तेमाल का यो दुआ वर्जी पहला का पुरुन में वर्ता कतल दुमर खेस्ता खकारे दो का ना दुमर खोले चा कपड़ो वर सरा मजा का वला چه انس دا ولی زمونگا اشما فارمولا کریم دیر خرسی گی چه سو که استعمالی انسان اغا تو گوری کنا مزا ورلا ورکی چه ارده دا مخ دونا خستخ کاری نو دادا چه خبرم کلر پسی کولا چه مونگا پخپل اکل لگیایو کلر بانده هم کار کو پرفیوم بانده هم کار کو انشالله رازی با قبل از وقت دا خبری کونا که نصیب که وی او زت مطمئنم ز پخپلا سیدا نو ان شاء الله تاسو ته ملاوی کی چې کم پروډکټ نه زنه ما مطمئن کنه ز ستړی کوونه خلق ډیر خيار دی ولا زکل کله ګورم کنه خلق چې کم دینو مطلب اوه او دا ما فیس واش دا مخ نه وخت لر کوي نو مال دون خندار شي مې دا الله بندا تا ته پته نشته چې بده فیس واش کې سدي اوره لکه څنګه چې اوس خوين دیدی کنه